समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने

0: कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और और ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा।

0: प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवार्णिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समान एव स्थितिः आगामी 7 पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरिणा अर्जितानां 71 धावनांकानां बलेना पंजाब किंग्स दलेना लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: शुणुले संस्कृत संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो। आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी सका 7 कार्यक्रम शुणुंट FM पेन 100.6 MHz जुगे और प्रसार भारतीर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप जुगे।

0: हर घर में कई कहानियां होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट। 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीनॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीनॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ा हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सुडुथिली शिशु राज्य कार्यक्रम उपस्थापनारे थिले बबिता मिश्र। कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र FM बैंड रो 106.6 MHz जोगे और प्रसार भारती मोबाइल ऐप न्यूजन AIR ऐप जोगे।
5: बन्या हेउ बा महाबात्या सब परिस्थिति रे
6: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
5: आबाल वृद्ध बनता समस्तंक पाई
6: जुआंग ओ सांतालम थारु बंडा एवं कोयांग को जाए सबुरी भाषा रे
5: केवल आकाशवाणी।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस 100 क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। अब भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नासिक सीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया के स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस विषय रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका

0: सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं, इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 30वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैजान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गैर

0: भारतीयों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मारी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहनाज।
2: धन्यवाद अवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोक सत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने

0: accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ 8:30 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର 100.6 ମେଗାହର୍ଟ୍ଜ ଯୋଗେ ଓ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଇଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଯୋଗେ।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह ली हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेली ऑफ सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र एफएम बैंड 100.6 जोगे और प्रसार भारत मोबाइल आप न्यूज अन् इआईआर आप जोगे। श्रोताबंधु प्रचार करूँ गीतटी ओडिया कथचित्र गीत। प्रथम गीतटी शुणु चलचित्र नीलमाधवर। गीत को गाय निर्मल कुमार।

0: ମହମ୍ମଦ ମସିଦ୍ଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ରଚନା ନିଜାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଡ଼ ଭାଉଜ
1: मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
2: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है। चेट्टीनाड सीमेंट पर
3: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी ब्रह्मपुर श्रोता बंधु आसंत सुनिबा गीतटी सुगम संगीत। प्रथम सुगम संगीतटी नेछु ভাস্কর চন্দ্র মহান্তিঙ্কর রচনার গীতটি গাইছেন আশামুকুল বারিক।

फिल्म संसार के जाने माने कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फिल्मकार हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

मैं हूँ जॉन इब्राहिम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर साइड में ला, मैंने कहा

0: अतः थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की गाने आपको सुनाए।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनें थोड़ी ही देर में।

0: अच्छा लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना लूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक नजरुल सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजनू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आर.डी. बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदम को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा ओ हमनवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनुतुलि कार्यक्रम विविध भारती केन्द्र आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय वर्तमान स्टूडियो घड़ी रे सकाल 10:00 कार्यक्रम सुनिश्चित एफएम बैंड रो 100.6 MHz जुगे और प्रसार भारती मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप जुगे। श्रोता बंधु वर्तमान प्रस्तुत करुछु सम हॉस्पिटल शीतलापल्ली ब्रह्मपुर द्वारा प्रायोजित आम फोन इन कार्यक्रम हेलो स्वास्थ्य पे कथाटीए। प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महाराणा, उपस्थापना पुष्पिता पटनायक। एथर आलोचनार विषय रही हृदगतार लक्षण कारण और प्रतिकार। श्रोतामान समस्त प्रश्नर उत्तर देखते हृदरोग विशेषज्ञ आसीस्टेट प्रोफेसर डॉक्टर बद्री दंडपाणी।

0: ଆମ ରାଜବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଘରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ।
1: ଓହୋ ମା, ତମର ପ୍ରତି କଥାରେ ଟେନସନ।
0: ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ?
1: ଦେଖ ମା, ଘରେ ସୋଲାର ଲଗେଇଲେ ଚିନ୍ତା ଯିବ।
0: ହଁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମାଗଣାରେ ହେଇଯିବ।
1: ଜାଣିନ କି ସରକାର ପରା ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି।
2: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म।

0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର 100.6 MHz ଯୋଗେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଯୋଗେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସକାଳ 11:02। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेनार्ड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेनार्ड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୀତା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୀତଟି। କଠଦାନ କରିଥିଲେ ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ ଓ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ।
1: बेटा चोरिया, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
2: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
1: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
2: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
3: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यारी और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୀତଟି କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମହାନ୍ତି।
1: कई कहानियां होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है
2: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिप सीमेंट। 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉम्प्रिट चॉइस।

0: ग्रुप पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: समस्त सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: ए पर्यंत यही योजना रे 8.85 लाख अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारे। यदि आप 18-40 वर्ष बयस तेरे मासिक अटल पेंशन सहित 3 ग्यारंटेड सुविधा विषय जानवाप आपण बैंक शाखा जोजोग कर।
3: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने कि उपाय
4: अंशुघात नई दिन 11 अपराह 3 पर्यंत टाण खरारे गृहपात प्राणी मानू बाहर को न छाड़ी गुहा किंबा छाई स्थान में रखत।
3: पशु पक्षी को स्वच्छ थंडा पा पीवा दिं प्राणी विश्राम स्थान गोठरी जलकुंडर व्यवस्था करतु।
4: गुहा कबाट और झरकार ओदा अखा झुलाई मझे मझे पा सिंचन करतु।
3: खुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जलकुंडर व्यवस्था करतु।
4: अंशुघात हेले पशुपक्षी मान किसी खाते ना पटी बाटे निश्वास ने सहित धके हूँ पार्टी नाकपोड़ फेण बाहर और समय समय जीव पदा को बाहरी आसे।
3: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत थंडा छाई स्थान स्थानांतरित करूँ। प्रचुर थंडा पानी पीवा को देवा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकों परामर्श करूँ।
4: अधिक जानवा टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करूँ।
3: मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार।
5: कार्यक्रम सुनिश्चित आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र एफएम बैंड 100.6 MHz जुगे एवं प्रसार भारतीय मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप जुगे। श्रोता बंधु, आज होची वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे, विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस, मानी लोक मानक मध्य सिजोफ्रेनिया एक रोग जहाँ विषय सचेतनता सृष्टि यही दिवस को आम पालन कर। यह एक गुरुतर मानसिक रोग जहाँ मनुष्यर चिंताधारा अनुभव और व्यवहार को प्रभावित करें। यह दिवस पालन करने द्वारा लोक मान रोग पीड़ित लोक मान सहानुभूति एवं समर्थन करिबार वार्ता आम दे था। भेदभाव एवं यही रोग पीड़ित लोक को सहानुभूति देखा निहाती दरकार, से सहयोग हाथ बढ़ेबा निहाती दरकार। किंतु रोगर किसी लक्षण देखा पूर्व आप समय सहित समय उपयोगी चिन्हट करिबा निहाती दरकार, ठीक चिकित्सा दरकार, परिवार रो सहयोग दरकार एवं मानसिक स्वास्थ्य सचेतनता द्वारा जने व्यक्ति सुंदर और सार्थक जीवन निर्वाह करिबारे। तेरे आसंतु समस्तक पई सहानुभूति मानविकता और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को यही रोग पीड़ित लोक मान प्रोत्साहित करिबा। तेनो यही प्रोत्साहन दिन को वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे भाव आम पालन करिथाउ।

0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର 100.6 MHz ଯୋଗେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଯୋଗେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30।
1: मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
2: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है। चेट्टीनाड सीमेंट पर
3: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: हेलो
5: राजेश बाबू, वो पुलिस थाना पहुँची
4: पुणी थे
5: आप डिजिटल अरेस्ट रे छंती अन्य कोठरी को जानतु एकुडिया आपन को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी लंबा बसीबे
6: 10 लाख दियंतु बंची जीबे
4: सर एथि कोठो
6: कोटे लिंक पठी छी एबे प्रोसेसिंग पई 2 लाख पठंतु बाकी पए
4: सर 2 लाख
7: कोन ला बापा
4: जियो से माने कहू छ तो पार्सल भितरु ड्रग्स मिली छी
5: अरे
4: काटी देला
7: पैनिक होनी बापा डिजिटल अरेस्ट बली किछ नहीं ए सब फ्रॉड
4: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक RBI इत्यादि नामरे आसुतिबा साइबर अपराधीक फोन किबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठंतु नाही आ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदी बुद्धिमता न देखैबे
4: त टंका होइबे।
8: RBI कहे सचेतन होतु, सतर्क रहतु।
9: सावित्री, मो ऑफिस जब छी
10: निया ए मासर इलेक्ट्रिक बिल भरि दबो।
9: बाप रे, एत्ते टंका?
10: मु त कहू छी 16 पैनल लगे दबा, मासकु 300 यूनिट पर्यंत बिल बंची जीवो।
9: सेरे केते खर्च हेबो जानिछ?
10: काई चिंता करूछ, सरकार सेतिपे सब्सिडी देउछन्ती परा।
11: आज्ञा हां, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र ओ राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछन्ती। pmsuryaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
12: समस्त पई सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
13: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गर्व के साथ बिता सको।
12: ए पर्यंत एही योजना रे 8,85,00,000 रु अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सिलेनी। यदि आपण 18 रु 40 वर्ष वयसर होइथांती तेबे मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटेड सुविधा विषय जानिबा पई आपण बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।
14: अच्छा दास बाबू, आपण घरटा 1970 रे तयार राइट खाली ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
15: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सिथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितले एवं आजि मध्य चेट्टीनाड सीमेंट उपरे
16: शक्ति जहा वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रहथाय। चेट्टीनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी ब्रह्मपुर श्रोतांधु प्रस्तुत करूछु महिला मानक पई हमर विशेष कार्यक्रम महिला महल। आजर उपस्थितनारे अछंती चंदना मिश्रा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप बारे में आपत्ति और सुझाव दे सके हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजू ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 12:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स

मान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजू ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 12:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स

हजरत सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाज थी, राजेश रोशन की तर्ज थी और श्रोताओ यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल होकर रोही चूलिया,
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहाँ होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार, और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है, तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉगिन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत, दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा मेरे दिल जरा लहरा के चल, आशिकाना मौसम कहता है इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे, ये बिंदिया जब जब चमकती है दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है और तस्वीर में वो बात कहाँ, कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है, काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है, खोल के ऐसे राज़ी दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है, ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े, दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले, ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओ, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आप

यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपने तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती है, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं कब आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं। श्रोताओं, साइकिल यादें तो आपको बतानी ही है, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी न कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और ही खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखी है कि जब पैर पैदल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लेते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और बाकी फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्माया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गुलजारा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा चोट आई पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकेंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं कुछ ऐसा ही होता है, खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात की है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चना, बादलों का झीलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुसी जाती है। प्रेम का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है।

एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो। कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं। कुछ धुनें सुनते हैं, सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं। ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो। कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो है आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी उन्होंने

में एक और श्रोता लिखती हैं कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कह उठता है मौसम है आशकाना। वही हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था। उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। तो अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत। आप सुन रहे थे प्रदीप कुमार पर फिल्म आ गया, साहिल लुधियानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी

भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा ही है, यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूमेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझमें है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता मेरे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है। श्रोताओं, क्या आपको मौसम प्यारे लगते हैं?

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। खुद फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तरह थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई, सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिन का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज ऐसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकिजा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जुड़ता है।

0: match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and the United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार ऊर्जा मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है बैठक में हमने पश्चिम एशिया मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा की
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा

0: और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुले हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते
1: These would be the principles with which we would approach that region.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है ये उससे कहीं अधिक व्यापक है जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं
2: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही अमेरिकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर उपलब्ध है दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है मतगणना 21 चरणों में हो रही है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एज 90 मैराथन का आयोजन किया करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कटाने को देखते हुए

0: पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांशी प्रांत में खाद दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेई हुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के योगी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वी सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों

0: अक्टूबर गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले पांच दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एते बजे आपण माने कार्यक्रम सुनुथिले रिले करी प्रचार करथुलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी कटक समय दिन 2:30 बजे 30 मिनिट अमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे टिकिए परे।

0: आम परंपरा आम कल संस्कृति आकाशवाणी ही रखी सही
1: बन्या हेउ बा महात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांदलंक थारु बंडा एवं पैंक जाए सबुर भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

सुल्तानपुरी के बोल को सुरों में ढाला चिरगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सबहार नगमे।

0: हमारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरूह सुल्तान जी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देने

0: मोहब्बत इसको कहते हैं स्विंग का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी की बुलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से

फिल्म माया का गाना था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, मंसूर सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सनी चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बन चाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शर्ब की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मन चाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मन चाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मन चाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

कान मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत की फरमाइश की रावर कर्नल से ज्ञान भूषण।

एक बार मुस्कुरा दो में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढला ओपी नैयर ने इस गीत को सुनना चाहा। दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी इसी गीत को सुनना चाहा। सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और ये सास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिनी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतू रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाह गुराई बुरीविली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाही गीत।

चोर मचा शोर स्वर का दो गाना था, भवन रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आर्या, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आर्या।

ये गीत आप सुन रहे हैं द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा।

0: चल चलो सुमित उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कुछ शॉपिंग के लिए,
2: तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी।
3: आया जी।
4: हाँ बिटिया,
3: हमारी लाइन यही दे देगा।
4: लाइन है बिटिया।
0: चल बैठ सुनो।
5: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गम है।
2: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
5: जूड़ा? अरे तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: वो देखो कहाँ देखो,
2: तुमने शायद शैम्पू किया है।
0: वाह इतने खूबसूरत बाल है,
5: एकदम वर्षा की घोर घटाओं की तरह।
0: सुमन सुमी वो देख, सुमन देखो कहाँ, कितनी अच्छी लग रही है।
6: सच में
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
5: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई कंपनी तैरती हुई चली जा रही है।
0: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
5: है? क्यों नहीं, तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कन्यार की गली यही कहेगी ना। ले समोसा का। हाँ तो फ्रेंड मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रहे हैं। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। बस ये भी चंदन जैसी है, बड़ा साफ से बच कर है ना माई डियर फ्रेंड।
5: रीमा तू नहीं सुनेगी।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
5: अरे यार समोसा खाने में
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
5: ओ रीमा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। कभी चाहता है इसे आँखों में अंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से सार दूं, करूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ रही, भाई मैं तो चली चलेगी सुमी।
5: आज ही भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय बाय फ्रेंड्स।
3: बाय।

0: और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कन्या, झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत बुरी है वो। अदखी अछुई ओस में लाई पावन कली की तरह, जिसकी बलगों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
2: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन हो गए अपने भैया के साथ।
3: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
2: अरे भैया, आप घर में सब ठीक तो है? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छे तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं लाता क्या?
2: वो तो नहीं। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
2: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
2: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तो जाकर अपनी पैकिंग करो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी ले आऊंगा।
2: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतनी देर क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
2: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
2: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान ही आने शुरू हो गए।
2: भैया मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं। अरे आखिर एक रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
2: ओ भैया,
4: सब ठीक है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान से परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
2: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तेरे रग मत छेड़, सब अपना कदर है। तेरे साथ से कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और लड़के की बहन मंजू, वो तो बहुत ही प्यारी है। सुन मैं चलता हूँ, तू तैयार रहना। हाँ,
2: सामान बांध लो, सब ला साहब है, उसे बिना पूछे सब कुछ तय होगा। कहते थे एमए कराएंगे और अब ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनील
3: चलिए, भैया जी आ गए।

0: अब घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है। पारुल दीदी के पैरों की धूल नहीं है ये। इसे कर मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: आप
0: उधर बैठिए।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी, ताई जी और बच के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अभी तो यह दुल्हन है एकदम चादर टुकड़ा।
2: किस पर आ ले हैं हमारे
0: चाय लीजिए।

0: आता हुआ है। हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीलो, तुम भी पीलो, तुम भी पीलो।
2: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है? हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कुंवारी के मन में चांद आते ही ग्रह लग गया। अरे क्या होगा?
3: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा? अरे मैं पागल?
3: अच्छा
1: तुम पागल हो? पागल हो तुम? पागल हो तुम? पागल पागल पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये तो क्या पहना दिया? हार अंगूठी, ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है। झूमो नाचो खाओ।
2: भैया भैया ये क्या कर रहे हो? भैया भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबू जी को बुलाती
1: हूँ। छोड़ो मुझे छोड़ो। देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम सब पागल हो, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ। क्या
1: मैं पागल?
2: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
2: भैया को फिर दौड़ पड़ा है बाबूजी। अनशन बोल रही है।
4: क्या कह रही?
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं भी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर से तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
2: अच्छा
4: भाई, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू तू बेटे बहू को संभालना।
2: अच्छा बाबू,
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
2: ठीक है बाबूजी। भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
5: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से।
2: मंजू जी
5: क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं? इधर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं। सच बताइएगा मंजू जी आपको मेरी कसम।
2: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं है।
5: तो फिर
2: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजिडी हो गई।
5: ट्रेजिडी?
2: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया ने बहुत प्यार करती थी और ये समा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
5: वहां ठीक करते हैं?
2: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
5: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
2: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप ही चिंता करती हैं। अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
5: जी मंजू जी अभी भूख नहीं।
2: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबू जी आ रहे हैं।
5: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस खराना शानदार हवेली चार पांच गाड़ियां ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अगर आप मेरा गला घोट दी जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी बेटी। रीमा रीमा तो सच कहती थी इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी। कैसा निश्चल भूरा चेहरा है। कुछ घंटों ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने। मुझे ही कुछ करना होगा।

0: की सजा दे रहा है मुझे।
1: क्या होगा भाभी जी?
0: क्या कह सकता हूं मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
2: जी बाबूजी।
0: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
0: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है पर बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
0: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुनी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
0: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो
0: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी उससे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
0: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा। शायद उसका वहां मन बहल जाए, चरित्र ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप ही आराम कीजिए।
0: ठीक।
3: अरे आगे आप लोग, सुमी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तुझ बोलते क्यों नहीं, रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर ले चल बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठो।
5: बेटा छोड़ना, छोड़ना।
3: क्या हो गया मेरी सुई बेटी?
4: हाय डॉक्टर साहब, देख कितनी तेज बुखार।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
6: इतमान रखिए, इतमान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भी इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ, इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
6: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुनी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
3: ठीक है,
4: आपसे जरूरी बातें करनी है, आइए।
3: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
4: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
3: धोखा? कैसा धोखा?
4: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़े
3: हैं।
4: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
3: अच्छा।

0: कई ससुराल वालों की बात तुमसे हम निपट लेंगे।
1: अच्छा
0: अच्छा कमा आप सबके पास जाइए।
1: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ती हुई। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुपट्टा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना। अगर श्रीमा और डॉक्टर रजन न होते तो क्या होता भैया, मैं तो टूट चुकी थी और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया। रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं टूटे हुए इंसान के लिए। मुझे मुझे हर वक्त समझाती रहती है पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं।
2: अंदर आ सकता हूं?
1: ओ आप आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खराया कैसी है वो, और जीजा जी और बच्चे का ठीक है ना?
2: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
1: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
2: यहाँ रहकर क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझ हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं, ये दुनिया ये समाज मुझे चीनेगा।
2: समाज समाज फिर वही समाज, क्या दिया है समाज ने तुम्हें, घुटन तनाव और दुख, दिल तिकर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें और रोग भी चल रहा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या, हार रहे हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से। चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन
2: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
2: सुमी।
1: और राजन
2: ओ सुमी मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया, शायद चंदन रस से सांप हट गए
1: और बिखर गई है मादक।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्यतन कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। प्यारा

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे सर कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंदा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म साहित्य।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहां थे
2: जी,
1: तो वहां पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिले, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: के फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब तक ऐसा कुछ हो ही रहा है
1: ना, ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बनी है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका

0: ठीक मैंने मेरे सारे एक पिक्चर सामने से नहीं आंख से तो मैं काफी चमागित हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो गए। तो बी आर ने कहा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ बैठो। मनोज यश को बुलाओ भाई यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश की पिक्चर में। साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए बैठा रहेगा कोर में देखिएगा
1: जी।
0: तो यश जी मान के बड़े भाई की बात मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: Yes.
0: मैं सिनेमा में हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके कोलीवाड़ से आकाश कुरला एक आने का टिकट वहां जाता पांच आने की पिक्चर एक आने का खाना और एक आना वापस आना अठनी में ये क्यों ना कर ले। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है ये तो बिल्कुल आसान है ये जाएगा इफ्तिखार करेगा करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जरा पे यश चोपड़ा में नोट किया उन्होंने भी देखा था शतरंजय मोरे यहाँ ये नोट कर लेगा इसको जबरदस्ती पांचवा से जोड़ कर कोने में बैठा साहब आगे थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मिलने
1: जावेद साहब ने
0: जावेद साहब और सुनील साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया बोले कि भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप। मैंने कहा आप कमल कर रहे हैं आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बहुत फिल्में कर रहा
1: था। हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे अजय खन्ना
1: वो कैसे दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके ध्यान में था और रमेश अलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब स्ट्रेस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है कोई और कहे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे
0: उनके पोस्टर फट दिए गए लाल बाग में और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तुमको अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ
0: तो उसका संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फट दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद करते हैं नहीं करते भी है देखते भी है याद करते सब है गाने भी इतना है सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी
1: बिल्कुल और थी वो
0: उस तरह के है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार
0: का अच्छा मुहूर्त हुआ अच्छी तरह से बनाई बड़े

0: रमेश तलवा से आपके दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया, आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस भेज, नया न्यू कमर राइटर।
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, राइटर राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सर साहब से कहें करने के लिए, बहुत अच्छा अगर सर से कर लिया तो। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और लिटिल वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का।
0: हाँ,
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ धारण किया नाटक,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर का रमेश जी को पूछ लू, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बार अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, अपने स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट करा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मतलब ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, मेरे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में आप अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब मैं काम करता हूँ और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल है। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया, भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। मैंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वो दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भरत कपूर को मैंने सुनाया था डेट, उनका मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट कैसा था वहाँ से, वहाँ उसके पाँच छः शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके चार पाँच, फिर पाँच छः शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: बन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस फूड डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए, पूछा तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेकर, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया उसने कहा, मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो, तुम्हें अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शू करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? जिया जी के पास पूछते हैं अगर वो करने के लिए हाँ करें। और जिया जी के साथ में सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी कर रहा था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। उन्होंने सब्जेक्ट सुना, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमीर से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहे और ऑडियंस में जिसको आप लाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेट कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा करना पड़ेगा, डेट होगा टूंगा। बोले ठीक है। रिहर्सलें हुई, हमने शो रखा भाईदास में प्राइवेट शो, जिसमें अमित भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह,
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे फेस देखे हुए जब जब मैं एक्टर था, मुझे आप ही करिए कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा बोल झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसे करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो उसने करनी शुरू हुआ और फिर मैं अमेरिका टूर किया, बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे प्रूव किया।
2: वाह वाह वाह,
1: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आते हैं आप एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जय जी थ्रो आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता समय 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने एक डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का होना भी, अगर मेरा रोल बीतेंगे लेकिन डॉक्टर डॉक्टर आते हैं मेरे आय पर, कॉमेडियन नहीं लेकिन वो रोल ऐसा होता कि मुझे डॉक्टर तो मिलते वो रोल भी वो प्ले। फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूपे गए, अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली, क्योंकि बार प्ले में आपको मुंह मांगा दाम में, जब आप स्टार प्ले करते तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह को जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रुजी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करें प्ले, प्ले करूंगा रोल करूंगा, कब करना चाहोगे, कौन सी स्क्रिप्ट सुनाओ, और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना।

और प्ले अच्छा आज चल रहा है वो भी, और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय कोरडिया है प्रभुरत, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में, तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ, वो प्ले भी नहीं हुआ आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आएंगी, अमित जी के ना के शत्रुज के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले, उन्होंने कहा आपका मेरे स्क्रिप्ट है, मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आप स्क्रिप्ट पर बातें सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आप सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया, उन्होंने कहा मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिटिंग प्रोड्यूसर होगा उन्होंने हाँ कर दी, अब तब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेट में देखा है, मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, बोले आप चेंज के जूते पहन लो, मैंने वैसे जूते बनाए उनके ऑपरेट रोल किया वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया, मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे, बोले तुम पूछो भाई मैं नहीं बोलूंगी, मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ करूंगा, पढ़ना है खाली ना याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं, तो उन्होंने भी ओके कर दिया, तो वो लेके हमने पांच छह शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस लेके वो चाहते थे वो रोल करे खुद, तो मेरा भाई अब ये तो फिर चल गया है अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप तो दीजिए प्ले, शबाना जी को ये तो करूंगा कि अब आपके साथ ये करेंगे, तो फिर मैं आपको सब प्ले दे सकता समथिंग राइटर। शौकत भाभी ने अपना अभी आप भी लिखी तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही है, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है आप वो किताब पढ़िएगा, तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर मैंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे क्या बात कर लो, मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब करो तो जावेद साहब को दे दे, अब दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा, मैंने कहा उसमें बीज सड़े हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है उसमें भी आप बैठे दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया हमने और ये भी है बहुत अच्छा बनेगा, तो एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखे, मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए, बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्म बना चुके हो कहिए, तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए, तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट की और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है, अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शवाना की और वो, तो आप किसी और तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते अभी भी असर वसर आई हुई है जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्म एडिक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने

लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उस कैरेक्टर का नाम श्याम है। तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना छुलवारा हिंदी में या कहीं और दूसरे कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसे, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था। और वकील रात में नितिन सेठी वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल। अचला से उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कितना तक का चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, बन गया। जब एंड तक पहुंच

0: इसमें रोल करता हूं कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: बाबा
0: तो वो प्ले आज तक आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कौलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा
0: है। काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि ये जब मैं शबाना संग प्ले कर रहा था तो इनकी भट्टाचार्य जी देवराज की बेटी वो आई, परीक्षित सर के संग आई थी, उन्होंने कहा रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टिक पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक से बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सर ने कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, तो बलराज सानी ने रोल किया था, उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अच्छा अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत की करवा कर।
1: मैंने देखा है क्यों प्ले है।
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हम एक वर्चन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमाया अपना, तो चलता है लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान के राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं एक्टर्स को लेकर लिखा रहा और उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ ये स्लो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने कारोबार कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने कारोबार कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो दिन बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गया है, ऐसा लिखे, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से आप बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अब यही बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी आपका वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: जी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना,

0: सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड से अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अनाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर यूं ही
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
3: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धकन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छायाचित्र कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोताओं देवड़ीजा सुनुले विविध भारती कार्यक्रम रिले प्रचार कले आकाशवाणी विद्यार्थी सेवा मुंबई रो कार्यक्रम शुणुंत आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रसारित होफएम बैंड 100.6 MHz जगे यह कार्यक्रम आपने शुणिपारे एक समय प्रसार भारती मोबाइल आप न्यूज अन् एआईआर मध्यम आकाशवाणी ब्रह्मपुर चलित अधिवेशन सन्धार आसन समय कतोटी ओडिया भक्ति गीत आज यह क्रम आम प्रथम ओडिया भक्ति गीतटे नहींचु स्वर्गद्वार भजन आलबम्रु गीतटी को गाई कुमार पापी निर्मल नायक गीत रचन संगीत देते प्रशांत पाड़ी तलासन सेवा स्वर्गद्वार भजन आलबम्रु कुमार पापी कंठे प्रथम भक्ति गीत

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: परपरा सुन सुन ओडिया भक्ति गीत गपगा बंधु

0: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 60 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: कौन रीमा, घरे सोलर लगे देला?
4: हाँ मधुबा, एबे आउ बिजली बिल पाई चिंता नहीं। चिंता ही माने? हाँ पा, सोलर करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजली बिल बंची जीव।
3: सतरे?
4: खाली सेती किनु? हाँ पा, सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिब।
5: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
6: এই গীতটি আপনার শুনছেন কলা চন্ন ভজন আলবম গীতটি গাইছেন মোহাম্মদ আজিজ প্রশান্ত সামলঙ্ক গীত রচনায় সঙ্গীত দিয়েছেন অরেন্দ্র মহান্তি।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर में कई कहानियां होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है।
3: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
4: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଳାଚାହ୍ନ ଭଜନ ଆଲବମ୍ରୁ। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦାସ। ଗୀତ ରଚନା ପ୍ରସନ୍ନ ସାମଲ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता सुनिले विभिन्न शिल्पीक कंठर केतोटि ओडिया भक्ति गीत कार्यक्रम शुणिंट आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रसारित होफएम ब्रांड्र 100.6 मेघाहर्ट्ज जुगे यह कार्यक्रम आपण मैंने एक समय शुणिपार प्रसार भारतीर मोबाइल आप न्यूज ऑन AIR माध्यम आकाशवाणी ब्रह्मपुर प्रचार कर आज जुवपीढ़ी मान कार्यक्रम जुववाणी आदि उपस्थापन अच्छा वर्षाराणी पाणीग्राही आज शुणिबे स्वतंत्र कार्यक्रम आकाशवाणी गौरवमय 90 वर्ष तालासन शुणिबा जुववाणी कार्यक्रम।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तभी भरोसा था और आज भी है। चेट्टीनाड सीमेंट पर
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ा हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: समस्तों को सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: ए पर्यंत यही योजना रे 8.85 लाख अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारी। जदि आप 18-40 वर्ष बयसर होती तेज मासिक अटल पेंशन सहित 3 ग्यारंटी सुविधा विषय जानवा आप बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।
7: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 तयार हेतला राइट, हेले ए पर्यंत एते स्ट्रॉंग केमिति अछि?
8: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सही थाय मु सेतेबेले विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेट्टीनाड सीमेंट उपरे
9: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बं पीढ़ी पाई रही थाय। चेट्टीनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ा हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: आम राजा बाबू कर जेते बेले देखिबो घरे एसी फ्यान सब चली थिबो।
11: ओहो मा, तमरो

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इजराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोती भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

0: सकाल बा संज दिन अबा राति आकाशवाणी सबु समय साथी
1: आकाशवाणी ब्रह्मपुर श्रोता बंधु प्रचार करछु संत तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर 41तम भाग
2: एपिसोड 41 41।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विवाह के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा दीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: अपा
1: हाँ?
0: देखो
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
2: सब बेले शॉपिंग
0: आई नो मां खर्च करबारो वयस एटा राइट
3: सेविंग करबारो भी वयस एटा
4: आई नो बापा सेव करो उचित जगह रे निवेश करो मूलधन ऊपर सुध मिलिबो जहां को पूर्ण तरह विनियोग करले सुध मिली चलिबो आई नो ना आरबीआई कहे
5: कर सटीक आरंभ हो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: ये हेउची मो सानो भाई बहुत दुष्ट कॉलेज रे मार्कशीट फोटोशॉप करिकि बापांकु देखौथिला काली मु लाइट बिल रे जीरो अमाउंट देखिलि तापरे भाबी कि निहाती एटा फोटोशॉप कराहि छि तहले जीरो बिजुल बिल पॉसिबल केमिति पचारिलि त कहला
7: भाई सबु सही ऊपर वाला दया सोलर पैनल

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ତାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିବ ଗୀତଟା ଶୁଣି ଶୁଣିବା। ସ୍ୱପ୍ନମଣିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ୱାଡ଼େକର, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି।

0: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक कितना

0: ମାନେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଟି ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଧକେଇ ହୁଅନ୍ତି। ପାଟିରୁ ଓ ନାକପୋଡାରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଜିଭ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ।
1: ଅଂଶୁଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ପାଣି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
0: ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1962 କିମ୍ବା 155333 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
1: ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର।
2: हर घर में कई कहानियां होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार, हर कोना आस्था बयां करता है।
3: और इन दिनों की मजबूत नींव है चेटिनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
4: शेष होला आज चाषी भाई मान कार्यक्रम किसान बाणी। आज उपस्थापन थे सुनील कुमार दास एवं प्रियंका पटनायक। कार्यक्रम शुणुंत आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रसारित हो एफएम बैंड 100.6 MHz जोगे आकाशवाणी ब्रह्मपुर श्रोता बंधु प्रचार करते हिंदी चलचित्र गीत कार्यक्रम आज क्रम आसन प्रथम गीतटी आम नहीं दिल कथाचित्र गीत गई उदित नारायण एवं अनुराधा पडवाल समीर गीत रचन संगीत दे आनंद मिलंद।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह ले हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम परवर्ती गीत शुणा सात रंग के सपने एक कथा चित्र गीतटी गाय बाबुल सुप्रियो एवं अलका याग्निक गीत रचना समीर।

0: कहीं विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: आकाशवाणी ब्रह्मपुर प्रचार करछु केतरी ओडिया कथा चित्र तो एक क्रम राशि जहां प्रथम गीत नै छु तो पई चलचित्र रो गीत रे को गछंती कुमार बापे एवं तपो मिश्रा गीत रे संगीत एवं गीतकार अनमत मिश्रा।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ପରପରିଧିରେ ଆସନ୍ତା ଶୁଣିବା ବେଗି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ହୁମେନ ସାଗର ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ସୀତମ ନନ୍ଦ। ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗୀତ ରଚନାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ।

0: कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। लेकिन दिक्कत तो है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, तो उस दिक्कत में हम कम से कम खाद फालतू तो नहीं आने दें, अनावश्यक ना डाले, ये हम सबको करना पड़ेगा। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूँ, कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं, और भरी बोरियों में दे दे किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदे नहीं, और पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान, नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की, जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है, तो नकली करने वाले को इतने वालों को क्या फर्क पड़ता है, 2,000 रुपये और फिर नकली बेचो। कड़ा कानून भी बनेगा लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए, और वो राज्यों को करनी पड़ेगी, हमें केंद्र पास सीमित अमला है, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। दलहन मिशन की बात अभी अतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात, ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाए, और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद, लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी, तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी, या नेफेड के एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करें और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से, तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग, जितने रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाए, क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में, इसलिए आप पर छोड़ा है। भारत सरकार के पास, आईसीआर के पास, हमारे केबीके के मिला 16,000 वैज्ञानिक है, हम इनको खेतों में भेजना चाहते हैं। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब ही आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध, अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। और इसलिए कुछ राज्यों ने अभी पहल की, गुजरात ने बनाया, यूपी ने बनाया, हमारे वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं, वैसे ही 1 जून से हम तय कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान, उसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दे सकते हैं, हम योजनाओं की ढंग से जानकारी दे सकते हैं, 1 जून से 15 जून तक सोचा हुआ है, हम दलहन तिलहन मिशन के बारे में भी बता सकते हैं, तो किसान को जागरूक करने का काम उसमें हो सकता है। तो इन सब विषयों पे जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करके फैसला करें।
1: कार्यक्रम रे जोगदेई कृषि क्षेत्र सामग्रिक विकास और कृषकों आर्थिक सशक्तिकरण उपरे उभय केन्द्र और राज्य सरकार गुरुत्व देउछन्ती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन्ती। से कहिछन्ती कृषि और कृषक कल्याण राज्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता, आधुनिक कृषि प्रजुक्ति, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक चाष को प्रोत्साहन माध्यम कृषकों आय वृद्धि सरकार कार्य करुछन्ती।
2: आप सभी को मालूम है पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्य में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, पेट्रोल डीजल के संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हगालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के

0: मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने पता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पंडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पंडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हकलू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य ही तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी

0: किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की याद का दिन है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम, अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ।

16 साल फिल्म का गाना सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना बताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सही दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई

शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला था।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L. सहगल।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों मजनू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

ऑडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यारों को जीवंत रखता है।

0: कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ऑरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोह में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तभी प्रसंग करेंगे प्रशांत डे रॉय।
1: इन द रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर The renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy. And Pandit Hari-Shankar Bhattacharya, stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hari-Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hari-Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafarkhani Bard, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hari-Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hari-Shankar Bhattacharya is accompanied on a tabla by Prashanto Diroy.
0: Pandit Hari-Shankar Bhattacharya sitar vadan ki is

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, तो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to gat in Vilambit

0: में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दी चंदी तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: You were listening to Raga Chayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Teen Tal.

0: ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलपूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार चिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।